You are tuned to the voices of the subcontinent. रेडियो हार्मनी के श्रोताओं को अरविंद गुप्ता का प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत है। रेडियो हार्मनी हर बुधवार शाम 7 से 8 बजे तक पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर आपके लिए आता है। रेडियो हार्मनी आपको समसामयिक मुद्दों, महत्वपूर्ण घटनाओं, समाचारों, विचारों और समुदाय से जुड़े मुद्दों की कवरेज लाता है। जानकारी और मनोरंजन से भरपूर 1 घंटे के लिए बने रहें। श्रोताओं, 2 अक्टूबर को हम भारत के 2 महान नेताओं की जयंती मनाते हैं। यह गांधी जयंती है और साथ ही लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है। रेडियो हार्मनी आज आपके लिए इन दोनों महान हस्तियों पर एक विशेष कार्यक्रम लेकर आया है। हम शुरुआत एक ऐसे भजन से कर रहे हैं जो महात्मा गांधी के दिल को बहुत करीब था।

वैष्णव जन तो तेने कही है जे, इस भजन को गाया था के एस चित्रा ने। मित्रों, अक्टूबर के महीने में अब तिथियां कुछ इस प्रकार होंगी। 2 अक्टूबर की गांधी जयंती, 10 को सर्व पितृ अमावस्या है, 11 की नवरात्रि शुरू होती हैं, 16 को स्कंद षष्ठी, 17 की सरस्वती पूजा, 19 को दुर्गाष्टमी और महानवमी और साथ में ही सरस्वती विसर्जन, 20 को विजयदशमी और दशहरा, बंगाल में महानवमी और दक्षिण में सरस्वती पूजा, 20 को ही बुद्ध जयंती है, 25 को शरद पूर्णिमा, 26 की वाल्मीकि जयंती और मीराबाई जयंती और 29 को करवा चौथ। इंटरनेशनल डेज में 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफी डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस है, 2 को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस है, 4 को वर्ल्ड स्पेस वीक, 6 को वर्ल्ड हैबिटेट डे, 7 का वर्ल्ड कॉटन डे, 9 को वर्ल्ड पोस्ट डे, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे और 10 को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। और भी इंटरनेशनल डेज हैं इस महीने में जो हम अपने आगामी कार्यक्रम में आपको बताते चलेंगे। दोस्तों, 2 अक्टूबर को 2 बहुत महत्वपूर्ण जन्मदिन मनाए गए, एक महात्मा गांधी का और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री का। वैष्णव जन तो एक ऐसा भजन है जो महात्मा गांधी के दिल को बहुत करीब था। बहुत कम लोग जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था। आज के हमारे कार्यक्रम में हम इन दोनों महान भारतीय नेताओं के प्रमुख जीवन, इतिहास और घटनाओं को कवर करेंगे।

जय जवान जय किसान, ये था फिल्म परिवार से एक गीत जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। श्रोताओं, आइए पहले महात्मा गांधी के जीवन पर एक रोशनी डालें। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात भारत में एक हिंदू मोध परिवार में हुआ था। उनके पिता, जिनका नाम करमचंद गांधी था, पोरबंदर शहर के मुख्यमंत्री यानी दीवान थे। उनकी माँ, जिनका नाम पुतलीबाई था, चौथी पत्नी थी। पिछली 3 पत्नियां प्रसव के दौरान मर गईं। गांधी जी का जन्म वैश्य व्यवसायी जाति में हुआ था। वह 13 वर्ष के थे जब उनके माता पिता ने उनकी शादी कस्तूरबा माखन जी से कर दी। उनके 4 बेटे थे। गांधी जी ने कम उम्र से ही जीवित प्राणियों को के प्रति सहनशीलता और चोट न पहुंचाने की सीख हासिल की। वे मांस, मदिरा और परस्त्री गमन से विरत थे। गांधी जी ने एक वर्ष तक बॉम्बे विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में, जहां से उन्होंने 1891 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और इंग्लैंड के बार में भर्ती हुए। डेविड थोरो द्वारा लिखित सविनय अवज्ञा को पढ़ने से अहिंसा के सिद्धांत के प्रति उनकी भक्ति प्रेरित हुई। वह बंबई लौट आए और वहां 1 साल तक कानून का अभ्यास किया, फिर नेताल में एक भारतीय फर्म के लिए काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां गांधी जी को नस्लवाद का सामना करना पड़ा। वैध प्रथम श्रेणी का टिकट होने पर उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया और तीसरी श्रेणी में धकेल दिया गया। बाद में एक यूरोपीय यात्री के लिए जगह बनाने के लिए फुटबोर्ड पर यात्रा करने से इनकार करने पर स्टेज कोच ड्राइवर ने उनकी पिटाई कर दी। उनकी नस्ल के कारण उन्हें कई होटलों से प्रतिबंधित कर दिया गया। 1894 में गांधी जी ने नेताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने भारतीय मुद्दे और दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश भेदभाव पर ध्यान केंद्रित किया। 1897 में गांधी जी अपनी पत्नी और बच्चों को दक्षिण अफ्रीका ले आए। उन पर नस्लवादियों की भीड़ ने हमला किया, जिन्होंने उन्हें पीट पीट कर मार डालने की कोशिश की। उन्होंने भीड़ के किसी भी सदस्य पर आरोप लगाने से इनकार कर दिया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में बार में भर्ती होने वाले पहले गैर श्वेत वकील बने।

रघुपति राघव राजा राम, ये गीत गाया था आशित देसाई ने। दक्षिण अफ्रीकी युद्ध के दौरान गांधी एक स्ट्रेचर बैरर थे। उन्होंने घायल काले दक्षिण अफ्रीकियों की सेवा के लिए 300 भारतीय स्वयंसेवकों और सैकड़ों सहयोगियों की भारतीय एम्बुलेंस कोर का आयोजन किया। उन्हें स्पियन कोप की लड़ाई में उनके साहस के लिए सम्मानित किया गया था। उस समय गांधी जी ने लेव टॉलस्टॉय से पत्र व्यवहार किया और टॉलस्टॉय के अहिंसा के सिद्धांतों की प्रशंसा की। 1906 में गांधी जी ने पहली बार ट्रांसवाल सरकार के पंजीकरण अधिनियम के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध का आयोजन किया। उन्होंने अपने साथी भारतीयों से अहिंसक तरीके से नए कानून की अवहेलना करने के और ऐसा करने के लिए सजा भुगतने का आह्वान किया। कई बार उन्हें अपने हजारों समर्थकों के साथ जेल भी जाना पड़ा। शांतिपूर्ण भारतीय विरोध प्रदर्शन के कारण जनता में आक्रोश फैल गया और दक्षिण अफ्रीकी जनरल जे सी स्मट्स को गांधी जी के साथ समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया और पूर्ण नागरिकता की आवश्यकता के अनुपालन में भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत वापस आकर गांधी भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय हो गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलनों में भाषण दिए और इसके नेताओं में से एक बन गए। 1918 में विनाशकारी अकाल के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए बढ़ते कर का विरोध किया। हजारों भूमिहीन किसानों और भूदासों के नागरिक प्रतिरोध को संगठित करने के लिए उन्हें बिहार राज्य के चंपारण में गिरफ्तार किया गया था। जेल में गांधी जी अकाल पीड़ित किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भूख हड़ताल पर थे। उनके हजारों समर्थक जेल के आसपास जमा हो गए। गांधी को लोग महात्मा और बापू कहकर संबोधित करते थे। उसे मुक्त किया गया। तब उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के साथ बातचीत में किसानों का प्रतिनिधित्व किया। उनका प्रयास काम आया। कर संग्रहण नीलबंदित कर दिया गया और सभी के कैदियों को रिहा कर दिया गया। अमृतसर में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा 379 नागरिकों के नरसंहार के बाद उन्होंने घोषणा की कि सारी हिंसा बुरी थी जिसने भारतीय राष्ट्र को आघात पहुंचाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में गांधी जी ने स्वतंत्रता और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ असहयोग के लिए एक अभियान स्वराज शुरू किया। उन्होंने भारतीयों से ब्रिटिश वस्तुओं का के स्थान पर अपने स्वयं के कपड़ों और वस्तुओं का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने 1922 और 24 के दौरान तक जेल में रखा गया। एपेंडेक्टोमी के बाद रिहा कर दिया गया। उस दौरान उनके चिंतित विरोधियों द्वारा एक स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। बाद में यह वापस कांग्रेस में विघटित हो गया।

साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये गीत गाया था आशा भोसले ने। फिल्म थी जागृति, जिसमें काम किया था अभी भट्टाचार्य और महमूद ने। दोस्तों, नए साल की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी स्वतंत्रता का झंडा फहराया। गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी की। गांधी ने एक शांतिपूर्ण राष्ट्र में हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने के एकमात्र तरीके के रूप में भारत के धर्म निरपेक्षीकरण के माध्यम से स्थिरता प्राप्त करने की योजना बनाई। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने के तहत धार्मिक विभाजन बढ़ रहा था, जो नमक व्यापार पर एकाधिकार से समृद्ध हुआ था। नमक की जरूरत सभी को थी। गांधी ने वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन को लिखा, यदि मेरा पत्र आपके दिल को प्रभावित नहीं करता है तो मार्च के 11वें दिन मैं आश्रम के सहकर्मियों के साथ नमक कानून के प्रावधानों की अवहेलना करने के लिए आगे बढ़ूंगा। मैं इस कर को गरीब आदमी के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अन्यायपूर्ण मानता हूं। क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन अनिवार्य रूप से देश के सबसे गरीबों के लिए है, इसलिए शुरुआत इस बुराई से की जाएगी। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक गांधी ने प्रसिद्ध सत्याग्रह दांडी तक नमक मार्च किया। ब्रिटिश नमक एकाधिकार और नमक कर के विरोध में वे पैदल ही समुद्र तक चले। उन्होंने हजारों भारतीयों को अपना नमक तथा आंदोलन अनिवार्य रूप से देश के सबसे गरीबों के लिए है, इसलिए शुरुआत इस बुराई से की जाएगी। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक गांधी ने प्रसिद्ध सत्याग्रह दांडी तक नमक मार्च किया। ब्रिटिश नमक

0: पना उठाया और घोषणा की, इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। गांधी जी की योजना कारगर रही क्योंकि इसने हर क्षेत्र, वर्ग, धर्म और जातीयता के लोगों को आकर्षित किया। सफल अभियान के कारण ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया हुई और बिना कर के नमक बनाने या बेचने के लिए 60,000 से अधिक लोगों को कारावास में डाल दिया गया। अंग्रेजों ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी। गांधी को 4 मई 1930 की रात को उनकी नींद में गिरफ्तार कर लिया गया था। अंततः लॉर्ड इरविन के प्रतिनिधित्व में ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त करने पर सहमति व्यक्त की गई। गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता के रूप में लंदन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्हें अपने अनुयायियों से विभाजित करके उनके प्रभाव को नष्ट करने के ब्रिटिश प्रयासों से वे निराश थे। गांधी जी ने अछूतों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अभियान चलाया, जिन्हें वे हरिजन कहते थे। उन्होंने न्याय संगत अधिकारों को बढ़ावा दिया, जिसमें अन्य जातियों के समान निर्वाचन क्षेत्रों में वोट देने का अधिकार भी शामिल था। 1934 में गांधी जी 3 अपनी जान लेने के प्रयास में जीवित बचे। 1936 में उन्होंने कुछ समय के लिए पार्टी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनकी लोकप्रियता सदस्यता की विविधता को दबा रही थी। कम्युनिस्टों और समाजवादियों से लेकर धार्मिक रूढ़िवादियों पर और व्यापार समर्थक समूहों तक वे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के साथ पार्टी के प्रमुख के रूप में लौट आए। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में गांधी जी ने घोषणा की कि भारत इस युद्ध में तब तक भागीदार नहीं बन सकता जब तक उसे स्वतंत्रता न मिल जाए। उनके भारत छोड़ो अभियान के कारण अभूतपूर्व पैमाने पर संघर्ष में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। उन्हें बंबई में गिरफ्तार कर लिया गया और 2 तक हिरासत में रखा गया। उनकी कैद के दौरान उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उनके सचिव की भी मृत्यु हो गई। एक आवश्यक सर्जरी के कारण गांधी को मई 1944 में रिहा कर दिया गया। उनके अभियान के कारण युद्ध की समाप्ति से पहले 1,00,000 से अधिक राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया।
1: There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so unlike all that I perceive through my senses. It transcends the senses, but it is possible to reason out the existence of God to a limited extent. Even in ordinary affairs, we know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet, they know that there is a power that certainly rules. In my tour last year in Mysore, I met many poor villagers, and I found upon inquiry that they did not know who ruled Mysore. They simply said, some god ruled it. If the knowledge of these poor people was so limited about their ruler, I, who am infinitely lesser in respect to God than they to their ruler, need not be surprised if I do not realize the presence of God, the King of Kings. Nevertheless, I do feel, as the poor villagers felt about Mysore, that there is orderliness in the universe. There is an unalterable law governing everything and every being that exists or lives. It is not a blind law, for no blind law can govern the conduct of living beings. And thanks to the marvelous researches of Sir J.C. Bose, it can now be proved that even matter is

0: हल ने चीर के धरती देश की खाली झोली भर दी,
1: देश की खाली झोली भर दी,
0: अपना खून पसीना देकर भारत की शान ऊंची कर दी,
1: भारत की शान ऊंची कर दी।
0: इसके

0: ये बस्ती है वीरों की, ये बस्ती है वीरों की, दुश्मन से कहो होशियार रहे,
1: दुश्मन से कहो होशियार रहे,
0: ना पाक निशान उन कदमों का, गौतम के हंसी घर पे न पड़े,
1: गौतम के हंसी घर पे न पड़े,
0: ये बस्ती है वीरों की, ये बस्ती है वीरों की, गांधी भी यहीं, नेहरू भी यहीं,
1: गांधी भी यहीं, नेहरू भी यहीं,
0: सरदार यहीं, आजाद यहीं, है भगत सिंह टीपू भी यहीं,
1: है भगत सिंह टीपू भी यहीं,
0: झांसी की रानी भी यहीं, झांसी की रानी भी यहीं, और वीर तांतिया टोप यहीं,
1: वीर तांतिया टोप यहीं,
0: ये बस्ती है वीरों की।
2: दोस्तों 8 बजने वाले हैं और मुझे आपसे यहीं विदा लेनी होगी। अगले बुधवार शाम 7 से 8 बजे तक पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर मैं आपके साथ विविध विषयों और मनोरंजन के साथ फिर से मौजूद रहूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि और प्रणाम। अगले कार्यक्रम के लिए बने रहें लैटिनो अमेरिकन आवर।

0: ये हैं मर्द मराठे सारे छत्रपति के राज दुलारे,
1: छत्रपति के राज दुलारे।
0: आन की खातिर मरने वाले, आन की खातिर जीने वाले,
1: जीने वाले। जय जवान जय किसान।
0: ये रजपूती आन के मालिक, राणा जी की शान के मालिक,
1: राणा जी की शान के मालिक।
0: राजस्थानी हृदय वाले,

0: घबरू ये पंजाबी रंगी चेहरा चाल शराबी
1: घबरू ये पंजाबी रंगी चेहरा चाल शराबी
0: आंखें तीर और बाजू खंजर रग रग में है एक बेताबी
1: रग रग में है एक बेताबी बाके घबरू ये पंजाबी।
2: The Canberra Writers Festival is on October 15 to 18.